सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच है ओ महा है। काची सौदी तोता आवे है गुरुमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजाई।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, रे परवाह अखुट पंडार है, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएंदा, आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उठापे आपे, आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा, जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएंदा, मारू महला पहला दर्शन।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जाती, आपे साच जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरु विछुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड्याई मेल न पछोताएंदा आपे करता आपे पुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पताल अरंबे गुप्तो प्रगति आएंदा ताका अंत न जाने कोई पूरे गुरते सोजी होई नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे दसवें वासा अलख अपारे सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा रब सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे शोभा पाएंदा गर्म है हाट पटनवा।

ते पंडार है सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा नदर करे पूरा गुर पेटे जम जम धार न मारे फेटे ज्यो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा आपे वर्ख है अमृत तारा रतन जवे हर लाल अपारा सतगुर मिले ता पूरा पाये प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ ले अमोलो कभी न काटस पूरा तोलो सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा बिरला को पाए पूरा सतगुर मिले मिलाए गुरमुख होए सो हुकम पछाने माने हुकम समाएदा हुक्मे आया हुक्म समाया हुक्मे दीसे जगत उपाया हुक्मे सुर्ग मच पयाला हुक्मे कला रहाएदा हुक्मे तरती तौल सिर पारंग हुक्मे पौन पानी गैनारंग हुक्मे शिव शक्ति करवासा हुक्मे खेल खिलाएदा हुक्मे आडाने आगासी हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी हुक्मे सास गिरा सदा फुन हुक्मे देख दिखाएदा हुक्म उपाय दस अवतारा देव दानव अगणत अपारा माने हुक्म सो दरगह पै जाए साथ मिलाए समाएदा हुक्मे जुग शक्ति गुदारे हुक्मे सिद्ध साधक विचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएदा काया कोट करे मैं राजा नेब खवास पला दरवाजा मिथ्या लोभ नाही करवासा लब पाप पछताएदा सत संतोख नगर में कारी जत सत संयम शरण मुरारी नानक सहज मिले जग जीवन गुर सबदी पत पाएदा मारू महला पहला सुन कला अपरंपर तारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देखे सुनो सुन उपाएदा कौन पानी सुने के साजे श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे अगन पानी जियो जोत कुमारी सुनने कला रहाएदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय।

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिगासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीके, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुर पुरुष निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

या अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत पुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवर्ताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक द्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर

पाया पंच तत् मिल ए तन किया आत्म राम पाए सुख किया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई काया गर महल मैली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दुइ साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त्र अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बहे तख्त की लायक पंच समाये गुरमत पायक आज जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यों साथ वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वसें।

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया।

सर्व निरंजन पुरुष सुजाना, अगल करे गुरु ज्ञान समाना, काम क्रोध ले गर्दन मारे, हों मैं लोभ चुकाया, सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पछाने सब विचारा, सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाया, सौ बैरागा सहज समाता, हो मैं त्यागी अनहद राता, अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया, दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोट सवाया, आपे साव आपे वन जाए।

कट कट रव रहा बनवारी पुरख अतीत वसै ने केवल गुर पुरख है पुरख मिलाया सब दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटे एक दिखाए आसा माए निरालम जोनी अकल निरंजन गाया हौ मैं मेट शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत्संगत सच फल पाया मारू मैला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा मन हर जप पार लंगाया हो मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आप उपाया गुरमत ले वो हर लिव तरिये अकल गाये जमते क्या डरिये जत जत देखो तत तत तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जिते लग तरना अकत कथ है देखे अपरंपर सुन गर्व न जो नी जाया सच बिन सत संतोख न पावे बिन गुरु मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए न तरिया एहो समुंद अथा मां बिक परिया रह अतीत गुरमतले ऊपर हर निरपो कह कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलम न लागे आवे जाई नाम विसार चले अभिमानी उपजे बिन खपाया उपजे बिन से बंधन बंदे हो मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये बिन गुर राम नाम क्यों त्याये गुरमत लेहो तरो पग जुतर मुक्त पहे सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमत लेहो परम पद पाये नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अगन निवार समाई मनमुख नाम जपो जग जीवन रिद अंतर अलख लखाया गुरमुख बूजे शब्द पति जय उस्तक निंदा किसकी की जय चीनो आप जपो जगदीशर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मंड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट पोगे पोगन हारा रह अतीत सवाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू मेला पहला काम

अनुभव पद पावे आप गवाए। ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे। हर जप ये अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा। हर जप से मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है। बाहर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा। हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए। हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके। जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम। जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये। अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे। गगन अंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये। शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण। हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला। भगत परापत गुरु गोपाला, सुन आनंद अनाहद वाजे। गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा। आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो। नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने। सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे। अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया। एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये। हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभु जाने। रह अलिप्त चलते कर्याणे, ऊपर आद सर्ब तिह लोई। सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला। कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया। जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम से आए। अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया। मन तन तंते नाम प्यारा, संत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गै जस गाया। सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गै गत पत पाए। साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा। विख्या मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय। संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया। साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया। वाचे है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना। अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया। करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में। पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया। तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुरु परम न जाया। न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी। पाखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर ना कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर ना होई है, माया मोह अंध अंधारा, हों मैं मेरा पसरिया पासारा, अंदिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत ना होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

पूजा अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजा है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो में मल लाई।

संगारे मर मरजम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक सब जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हों होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हों मैं सब देखोई है। आपे गुण

साचे ते पत होई हे। मारू मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक

आचा मन पी वे पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए कर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँके जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है।

फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की जूठी जूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेखे इकना बख्श ले तुर लेखे हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेखे बिन सतगुरु बूझ न

बहुते टेक करे न पाए, बिन सदगुरु सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावे तितरा चराए। आपे मेहरवान सुखदाता, ज्यों पावे तें चलाई है। आपे करता आपे पुगता, आपे संजम आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता, कट कट वस रहा जग जीवन दाता। इक है गुप्त प्रगट है आपे, गुरुमुख परम पहु जाई है। गुरुमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता। जित तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सत्ता लाही गहर गंभीर है। सब जग है तिस ही कहती रह, सब कट भोग वै सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाही। गुरु प्रसादी मन वसाई, आपे आए वस्या कट अंतर। टूटी जम की फांसी है, किस सेवी तै किस सलाही। सतगुर सेवी शब्द सलाही, सच्चे शब्द सदा मत उत्तम। अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा। बूंद पवे बिन सह तहत ना लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझे, जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित कट हर नाम निवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचे लागे, हर गुण गावे अमदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर, रसना हर रस राशि है। हर नाम चेता अवरना पूजा, एको सेवी अवरना दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रम जोनी फिर आया, आप पूला जा सतम पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे, चीने शब्द अवनासी है। काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पाथर मेल ले हो तुम, आपे साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे ना करने जोगा, आपे करे करावे तो होएगा। आपे बस ले सुख पाए, सभी नाम निवासी है। तिर तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वनज अपारा। सच तन जमया कोट ना आवे, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय। आपे बस ले नाम दी जय, गुरमुख हो वै सो पत पाए। इकत नाम निवासी है, अंतर हर तन समझ ना होई। गुरु प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख हो वै सो तन पाए। सभी नाम निवासी है, अनलवाओ परम पुलाई। माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधे किछु न सूझे। गुरमत नाम प्रगासी है, मनमुख हो मैं माया सूते। अपना कर न संभाले अंत बिगूते, पर निंदा करे बहु चिंता जाले। दुखे दुख निवासी है, आपे करते कार कराई। आपे गुरमुख देव बुझाई, नानक नाम रते।

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचे अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रैगुण बद्धक मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, हम दिन नाम रवि जाए, वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर करी जाए, वेद बाद सब आँख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, उन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पी जाए, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे को ही चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ पा

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूं मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूं मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन ही चीना गुरमुख हो वै सो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूं मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूं मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच से आवे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अंग दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे और माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है। हूं मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खसम लिख पाया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक को

दर सात छह सात पछाता है मारू सो लेती जा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द विचारा। जो तुद भाव है सोई करते सच्चे सो मन राता है। आपे हीरा रतन अमोलो आपे नदरी तोले तोलो। जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञानमती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्षे सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हो मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हो मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए।

सोई खबर सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरण आई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप्तो वरते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते अंग दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सो है दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे। अंग दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा

लाबू जै कोई नानक जन नाम सलाहे बिगसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा किसदा अंत न पाये पारा वारा गुर प्रसाद रविया कट अंतर तित कट मत अगाह है। सब मैं वरते एको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई सबना प्रतपाल करे जग जीवन दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया हुक्मे ही सब जगत उपाया हुक्म मन्ने सोई सुख पाए हुक्म सिर साहा पात साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा तिस दे शब्द निस्तर है संसारा आपे करता कर कर वेख है दींदा फास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए गुर कै शब्द रते रंग लाए हर साला है सदा सुखदाता हर

सतगुर पूरा साच दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रापे, अंदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, सिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा सलाही, सबना सिर तू एको साहिब, सब दे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

मेरे प्रभ साचे इस खेल रचाया, कोई न किसी जिहा उपाया, आपे फर्क करे वेख विदसे, सब रस दे ही महा है, वाजे पौन ते

वर्ते अवर नबिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौं मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप सफे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

पूरे गुरते सो जी होई। हर रस पीने सदा ते आयन गुरमत शील सनाहा है। अंदर रंग सदा प्यारा गुर कै सबर हर नाम प्यारा। नौ निद नाम वस्या सट अंतर छोड़िया माया काला है। रईयत राजे दुरमत दोई बिन सतगुर सेवे एक न होई। एक त्यायन सदा सुख पायन नेचल राज तिनाहा है। आमन जाना रखे न कोई जम्मन मरण तिसे ते होई। गुरमुख साचा सदा त्यावो गत मुक्त तिसे ते पाहा है। सच संजम सतगुरु दुआरे होमे क्रोध सबद निवारे। सतगुरु सेव सदा सुख पाये शील संतोख सब ताहा है। होमे मोह उपजय संसारा सब जग बिन से नाम विसारा। बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये नाम सच्चा जग लाहा है। सच्चा अमर सबद सुहाया पंच सबद मिलवा जावाया।

गुरुमुख सच्चो सच वखाणे, गुरुमुख सच्चे मैं सच्चो सच्चा, गुरुमुख सबद सुनाएदा, गुरुमुख हो वै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरुमुख हो वै मन

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकाश।

विचरव्या शब्द अपारा गुरुमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वणजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सबदे बूजे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी अन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएदा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पेते ठौर न पावे आपे खेल कराएदा आप अपरंपर

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कभू न टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएंदा, एक माया मोह गर्भ व्यापे, हो मैं होए रहे हैं आपे, जम काले की खबर न पाई।

सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी शरणाई ज्यों तुद पावे तिवै चलावै तू आपे मार्ग पाएंदा।

आपे साजे अवरना कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा।

मत जिहे सो होवै तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंग ना केतै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुरु पगत दृढ़ाए, बिन पगती विस्तारित वासा, विस्तारित फिर पाए दा, कर्म होवे गुरु पगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवें चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तत न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाए दा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेख है, गुरमुख आप बुझाए दा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा, आप निराल

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूर बोल दुख पाएंदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएंदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएंदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु से

अंदिन मारिये दुख सबाया, मथे काले महल न पावे, दुखी विच दुख पाएंदा, सतगुरु सेवे सेवड पागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी, सचो सच कमावे सधी, सच्चे मेल मिलाएंदा, जिसनो सच्चा दे सो पाए, अंतर साज परम

आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएंदा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कानी पीड़ाएंदा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएंदा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

अपना पाना आप मनाएगा, तेरा पाना मने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएगा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सबसिष्ट उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएगा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कबू पाएगा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा तुर फुरमाई,

पी जाए, रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कह शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चे

जिन शब्द है सब अंधेरा, गुरमुख किस बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए, ए वेला सिर हाथ न आवे, पद किस है पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा, किस विच वसे सच गुणी गहीरा, सचो सच वेखे सब थाई,

मिलसाते सुख पाएगा। सोचे तेजिस आप चिताए, गुर कै शब्द वसै मन आए। आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे।

यह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पाजा गुर सेवे

पुत्र इस बाणी ते हर नाम पाएगा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेत बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा। गुरमुख एक स्यो लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएगा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बंत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, अन दिन सदा हर भगती राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौं मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करें अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमा।

सुधारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौं मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या।

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मो गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग न व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर

सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझस बीजी कारा, गुरमुख सच वसै कट अंतर, सहजे सच समाई है, सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाई, गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चितलाई है, सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा, सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है, बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाए परम मरे अपागे, नानक तिन की फिर गत होवे, जी गुरमुख रहे शरणाई है, गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची, ओ दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर शरणाई है, अमृत रस सतगुरु चुआया, दसवें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है, जिनको करते तुर लिख पाई, अंग दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई है, जिस पावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले, आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है, ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है, प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है, गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए, नाम में नाम रते सुख पाया।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख बखानी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहा सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिनको आद मिली वडियाई, सतगुरु मन वस्या।

गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछोतानी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन में बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन में थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय है। मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास हो

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थानंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक

अनहद ऋण चुनकार सहज तुन साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी। अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जय काल जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभ अपने ईश है। तिस बिन दूजा अवर न दीस है एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन रात।

जाने मिल एकत्र वसे दिन राती प्रियो दे तने दिलासा है। तन मांगे प्रियो बहु विदतावे जो पावे सो आन दिखावे एक वस्त को पहुँच न साके तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोरे प्रिय प्रदेश न जाओ वसो कर मोरे ऐसा बणज करो ग्रे पीतर जित उतरे भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है। तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रेम बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाए।

सुरत सबद रिद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जाहे, मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर पया अविनाशी थी वे, ना को आवे ना को जावे, गुरदूर।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक सात संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे

84 जोन सबाई मानस को प्रवदी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवे तिस क्या कहिए।

सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाए दा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी

तेरी श्रवण सुनिए, दूजी अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी तारणा, आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा, एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक तृप्त अघाए, सब सह तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा, सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा

पैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे। आप छोड़ पए शरणाई, जिसका साथ इस कालना। ऐसा को वड पागी आया, आठ पहर जिन

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

बूझै सतगुरु साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसे ते पायना जांकी तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायना पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे।

की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे।

जैसे दैत सब सिमरे अगनत ना जाई जस गना, सिमरे पश पंखी सब पूता, सिमरे वन पर्वत अवधूता, लता बली साख सब सिमरे, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरे थूल सूखम सब जनता, सिमरे सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरे प्रभ मेरे, सगल पवन

परम रुणा। गुर का शब्द वसै मन जा कै दुख दर्द प्रमता का भाग है। सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन

गुर ज्ञान अंजन काट्यो परम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा गहर गंभीर अथा स्वामी।

पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सदबक्षंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना।

किंचन काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों।

तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंघावे आपे सतगुरु जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया।

आई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीशर हर जियो असर संगारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर, कट कट वासी है संगा, तरणी तर ईश नरसिंह नारायण,

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज

बहन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत्संगा, पीत पीतंबर त्रिभवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुखपणी, सारंग तार भगवान बीठला, मैं गणत न आवे सरबंगा, नेह कंटक नेह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थिर थान जिस है अपग्गा, पतित पावन दुख पै पंजन, अहंकार निवारण है पवखंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे ना कित ही है पिगा, निरंकार अचल अडोलो।

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

इक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पय शरणाई, देहो दर्श मन रंग लंगा, तेरी गत मित तू है जाने, तू आपे कथे।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार त जाए, तिस जन को उपदेश

खुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू मेला पंजवा, इको अंकार, सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

पूरन पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडपागी, बहुर न जोनी पावना, जिसनो बिसरे पुरख विधाता, जलता फिरे रहे नितताता, अकिरत कने को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मेरे साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहे समाये, मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाट। नानक पूरा तोल है कबू ना होवे काट। महला चौथा नाम विहूने परम सै आवे जावे नीत, इक बांदे इक टीलिया इक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा। दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा, हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा। श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई सब दे करे प्यार, सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार। विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अब गुण कटे विडार। नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई। हर स्यों प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

बेकार कमाए। नानक चानन गुरु मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चलदिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा। गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे श्रेष्ठ सब साजियन आपे वर्ती जाए। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुरु

मनमाए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या ले ओ, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, पेखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे, सो हर सरनाई छुटिए जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्या

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नव निध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत दाहपन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया।

जममग ना पावे, हर नाम ते आवे दिन सरात, हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पयाल।

जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरे गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखेदा आपे दे सजाए नानक एवे जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामे तृप्त नाही दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही श्लोक मैला तीजा इस जग में संति तन खटिया जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए इस तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए मन मुख जगत निर तन है माया नो बिलाए अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए मैला तीजा जिन उपाय मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवरना कोए खाना शब्द चंगिया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे न होए सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर सब दी जापे हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस्त्रा पे हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने है सुख पाई है गुर सबदी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर सबदी दर जानिए अंदर महर असराओ। खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

प्यार अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा गुरमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया, गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया। हर आज्ञा होए वेद पाप पुन विचारिया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण विस्थारिया। नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवा।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

श्रेष्ठ करण डखने महला पंजवा जे तू वत्तै अंगने हब धरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारया एव हर पाइया एक विचों ही तुद रखया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

0: पौड़ी।
1: जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन नावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां न खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पायरो हर वसदा नेड़ा डखने महला पंजवां जामू आवे।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन वचन नेचल गुर सादा जिन को पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यो रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुजुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरियो थियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करें पुत्र कलत्र सने।

ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां।

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोले बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परले करण कारण समरथ है घट घट सब बोले रुजक समाहे सब सह।

दे रहा हूँ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खरचंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर छापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, ना है तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछड़ा ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया, गुरु जान दिया समझाए, अंतर्गत हर

राम उदक जे जन पिया ते बहर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

तारण तरण तब लग चाहिए जब लग तत् न जानिया। अब तो बिमल पय घटी मैं कह कभी मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। काहे सीजत है मन पावन जब जम आए केस ते पकड़े।

बिन बै अनुभव होए वना हम बै सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए वना हम बै।

जीड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग न

हर मुकत चारे सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद राज भविकन अधिक करयो नवनिध ठाकुर दई सुदाम धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या, अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मान्या रहा। अर्ज को अर्जया, सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव को रमया, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया।

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की गय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गय पटके ता दिन कृष्ण बस।

माहे। व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जी मां गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन धीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुपाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागन हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक बरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

सुख मैली नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे धरती दुख सह सोख अगन पक्ष अगन रस सोख मरिय चोख भी सो किरत नहारे रस फिर छाया धन ताके।

सावन सर्फ मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए, फिर घरनी आवे मरिए हावे, दामन चमक डा।

नानक सा सोहा गण चंके फिर कै अंक समावे बादों परम भूली पर जो बन पछताने जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाइए असुन आओ फिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाय सुई झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पसे सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कतर किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बले तत जलाया दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ मा है सरसी अवगुण मारी मर न सीजै गुण मारी तामरसी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सब आया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने तब पाने ता पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन नहा प्यारी अब भक्ति तिर आगे भोख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी अंडर धीरज सेतज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुंद समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस भया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर

राखो खेती हर गुरहेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भाग। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हाँ सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम प्यावे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल त्याई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमानिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आगे शीस टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवानी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बहे गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कह तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनात। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी, जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर।

हो करते जिस हर हृदय नाम सद कविया तू थान सनंतर हर एको एक रविया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिसके मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत प्रगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रैलोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थे हो गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी पिरके ताई ज्यो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे तू साचा साहिब साओ अमिता
सुप्रीतम प्यारा।

प्राण हित चित्ता प्राण सुखदाता गुरुमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीशर तिन साध संग मन जिता कहो नानक जीड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा ठाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। हर नाम अरादे से तन जन कई है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात गल लाविए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मती जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की कूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिस्तरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। खिलारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ, अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारो। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन प्रीतर। मांगन कौ हर दान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग त्यान, केदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जब सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरख विधाते। कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा। प्रिय की प्रीत प्यारी।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दर सारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेण होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहा।

मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिखिया रस ओगवत नै निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटत अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात किदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रो आप राख्यो ने उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु परकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

विदाता, मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निद गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरण आई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सहे, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सुसवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास है बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यों देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरने संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे।

दौ विवर्जत तजो मान अभिमान। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहना सा निरपौ।

आई। जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवा दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

राम ना जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल ना दूरे, अनक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या तो करे परानी, जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकार जाए। राग केदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे

तुझते बाहर किछु ना होए, तू कर कर देखे जाने सोए, क्या कही है किछ कही ना जाए, जो किछ है सब तेरी रजाए रहाओ, जो किछ करना

विडानी करे कराए जाने आप नानक देखै साप उथाप इको अंकार सतगुर प्रसाद राग पैरो महला पहला कर दूजा गुर कै शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सनक सनंदन तपसी जन केते गुर प्रसादी पार परे पव जल बिन शब्द क्यों तरिए नाम बिना जग रोग व्यापिया दुबदा डुब डुब मरिए रहाओ गुरु देवा गुर अलख वे

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा कहरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर्क उतारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे सुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पतीने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो सात रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाइये अमर पदार्थ ते किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाइये मन रे राम भगत चितलाइये गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइये रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा
बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे नेफल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ ब्या करन वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

तिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पणत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निद पाई रहाओ।

चार हुक्म बुझ समाना। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरो मैला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जलें अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे।

सेवा प्रबलाए, हर का नाम निधानो पाया, सुख वस्या मन आए, चौथी पदवी गुरुमुख वरते हैं, तिन निज कर वासा पाया, पूरे सतगुरु कृपा कीनी, विच्चों आप गवाया, एक तस्की सिरकार एक, जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया, नानक ने चल साचा एको, ना ओ मरे न जाया, पैरों में लाती जा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा, गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर सबदी विचारा, हर जियो सत्संगत में लाए, नानक तिसनो देव दयाई, जो राम नाम चितलाए रहाओ, ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जम की है सिरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवे, जिन हर राख्या उर्धारा, जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

दुख विचकार कमाए, गर्व जोनी विच कदे ना निकले बिस्ता माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम न पाया रहा। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वडियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार। से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। जिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिनकी रेण पूरे पाग पाई है, जिनी राम नाम चितलाया पैरों महला तीजा। शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाई है। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवा।

होमे रोग न जाई, पर परलू जय बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुरु सेवे परम गत पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिना मन।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुण का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अन दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर सबदे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। खिन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण। किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन भगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर

कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता तत्पाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझके बाहर कोई ना है। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे, इसके नेड़े कोई न जावे, तू जल थल मैल सब ते भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

हर का संत हर की हर मूरत जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक पाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधुसूदन जपिए उर्धार देही नगर तस्तर पंच तातु गुरु शब्दी हर का डे मार रहा जिनका हर सेती मन मानिया जिनका

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याई है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरो महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे किन किन किन कौ हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया ते हर दरगे का डे मारी, ते नर निंदक सोभ न पावे तिन नख काटे सृजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरो महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागति आए भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आ

वह जीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम, राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार, नानक दास को किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना।

हर जप जप उभरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखे नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु।

को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभु का साचत कहते मेरा अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पल जल फेरा होम जग जप तप सब संजम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया कहरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो गृह पेख्यो उदासाए दंड

रस मंगल गुण गाए रहाओ, जोग पेख सन्यास सहते क्यों, जत जंगम कापड़ाए, तपी तपी सर मुन में पे क्यों, नट नाटक

पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

महला पंजवा जिस तू राखे कुछ कौन मारे है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वै जे करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार राव जिनसे व्या निरपो सुख दाता।

जन नानक अपना साचै कोय पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरै नर हर तौ करिए जे दूजा।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

वासन रोग पवर विनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटह न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

सतगुरु तै हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया। जिन गुरु सेविया तिस पौ ना ब्यापे, जिन गुरु सेविया तिस दुख ना संतापे। नानक सो दे सुमरत भेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पाया, नाम लैत पाप तन ते गया। नाम लैत सगल पुरवाया, नाम लैत अत मजन आया। तीरथ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेश तक ज्ञान रहाओ। नाम लैत

नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, रुमन दी जैता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख डेरा तह, अमृत नाम शीतल मन गह,

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। पैरों महला पंजवा, चितवत पाप नालक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे। राच रहा बिरथा व्यवहार राव, एक माया रा।

पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के चिल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

का स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभु कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम निधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लखे न जाए जा का परवासा सब कट माए।

पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी इज्जत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौशन बंद चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर शोक न होए, दिखला का सब

नानक आया सो परवान। पैरों मैला पंजवा संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख साम, दान दैत निंदक को जाम। संत संग करें जो बाग, किन निंदक नाही किसाद।

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार।

ने मूर्मुग्ध होए चतुर्स ज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नुक न आवे ताके जाम रहाओ जब ए नाश हो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतिपा

हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ। अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम तिराए हर हर हरे, सात जना कै संग निस्तरे। गैरी मीत होए सम्मान, सर्व में

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन परदास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए।

जो पावे त्यों रखो गुसाई पैरों मैला पंजवा गुर मिल त्यागो दूजा पाओ।

सहो नानक प्रभु कृपा करी। सास गिरास जपो हर हरी पैरों महला पंजवा सबसे ऊंचा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ। जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसे मन आए।

नानक को गुरु तय दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ, तीरथ नाए कहाँ सुत सैल। मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंधन का मूल। हर के भजन बिन

गुर सुख प्रसन्न होए पाओ गए, नाम निरंजन मन में ले, दीन दयाल सदा कृपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन पने, रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत, खिन में बिन स्यों महाप्रेत, हाथ पैर हर हर जप जाप।

पूरन मन पानी जल थल मही अल रव्या सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत भगवंत सतगुरु जी नो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार राव सोई ज्ञानी जे सिमरे एक सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक सो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम

कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ ना पो है, हर सिमरत मोह मान ना बदे, हर सिमरत गर्भ जोन ना रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जां कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किछ जनता कै, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जन तन, पैरों मैला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर रव रहे।

हर जन करे सुने चल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार। पैरों महला पंजवां।

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं।

पतरा फैसोई कीते कह कहे है क्या होई किरत संजोगी दैत राज चलाया हर ना बूझे तिन आप पुलाया पुत्र प्रहलाद से।

हम मूड मुगद किछ बूझे नाही, तू आपे दे बुझाई, जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई, जगत उपाय तुद तंदे लाया, पूंडी कार कमाई, जन्म पदार्थ जुए हारिया, शब्द सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन

තර්ථත්‍යාන कोट तपी सर तप ही करते, कोट मुनि सर मौन में रहते, अवगत नाथ अगोच

ना राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना। उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आप।

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

ओत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कहे करताल बजावे, चटिया सब है।

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

दयाला प्रणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल सौरड़ी बस सब किछ सांझी।

गुर कै शब्द रहा भरपूर, जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सब समाल, दर्शा चै पत्थरों कर जाए, नानक नाम बढ़ाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मनते होए, एको वेखै और न कोए, दूजे लोकी बहुत दुख पाया, सतगुर मैनु एक दिखाया। मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत, ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद रहाओ, गुर पूछो तुम करो विचार, ता प्रभ साचे लगे प्यार, आप छोड़ होए दासत पाए, तो जग जीवन

में लावा होए, जिन सत्य व्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करें जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर सेती सद रहे लिव लाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको से वो अवर न कोए, जित से वे सदा सुख होए, ना ओ मरे ना आवे जाए, तिस बिन अवर से भी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच सबद प्रभ एक सियान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर।

लै पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता से जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसे मन।

मन शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाए।

बनस्पत मौली चढ़िया बसंत, हे मन मौलिया सतगुरु संग, तुम साथ से आवो मुग्ध मना, ता सुख पावो मेरे मना रहाओ, इत मन मौलिया पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक सब आख वखाने, हुकम बूझे ता एको जाने, कहत नानक हो मैं कह न कोए, आखन वेखन सब साहिब ते होए, बसंत महला तीजा, सब जुग तेरे कीते होए, सतगुरु पे तै मत बुध होए, हर जियो आपे लहो मिलाए, गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ, मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलिये राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, राम नाम राखे उदारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नानक इहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा, तिन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा, बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए, ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा आपे लाए, मूल लगे ता सतगुर पाए, आप बसंत जगत सब वाड़ी, नानक पूरे पा

टूट तिना की अकुली है पाए, सब संगत मेल मिलाए, आप सराय करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सब

रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वरते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिले।

राम नाम रतन कोठरी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनछे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपछे, जन्म जन्म के किल विखमल परया।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक परयो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जपियो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है, गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाई है रहाओ, कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह न सकाई है, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काड है, त्यों सतगुर वस्त लहाई है, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाई है, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाई है, बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्नी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकड़े काल सलुंज, गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज, राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज, हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो।

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण इक गुण ना जान, हाँ कछु ना जानो तेरी सार,

तरों टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से पनी जिन तू सेव्या सुखी से।

देखने लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए एव पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन अर्थ।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत पछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई एक मन एक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहेब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिन लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ की ओ निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुखतनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नितरा तो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप। जप हर हर मंत रहाओ, सोग संताप कटे प्रभ आप। गुर अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाओ। सब फल पाए निचल गुण गाओ, नानक भगता कली।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा। हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दयाल गुरु।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख।

दुबदा दूर कर हो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इन विद पासा टालो वीर गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ कर्म तर्म तुम चौपर साजो। सत करो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोजी को ऐसी खेल हर प्यारी। उठ इस नाम

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने, जिसनो कृपा

है भाणा कहो नानक कह तया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मैला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

रहाओ यो जग तुए का पहार तै साचा मान्या के विचार तन तारा संपत ग्रहे कछ संग ना चाले समझ ले एक पवित्र

के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरे दे।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपाधार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, न अस्थिर दिसे एक।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणों मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सचना।

व्यापे खट खट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख हीते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधू

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द।

बे मोहताज बे अंक अपारा सचपति जय करने हारा नानक फूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं।

चार कर मेहलत चार बहाली, चारे दीवे चौहत दिए एका एका वारी। मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है

जो कृष्ण बिदर कर आया, मिलियो सुदामा पावनी तार, सब किछ आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकुर आप रखाए, जे सब साकत करें बकीली।

आपे जल अपवंतर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी।

गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, विदर उधार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

कर कृपा प्रभु देहु नाओ तू करता तू करणहार तू ऊंचा तू बहु अपार कर कृपा लड़ देहु लाए नानक दास।

हर का नाम ती आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई, पंजे बदे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रह नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हास्ता, निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गौ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगु तो मैं को आहे माँ दो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जाने पाच बर्द पचीसक संग काच नौ बैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी ताहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिहे कटे मूल नित बगे ब्या

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, जय जिस तांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर।

माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे आवे झूठे जाए भी झूठे झूठे मरे अभागे।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पवे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

मिथिला सहज अवल तूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हाँकती जैसे पनकत त्रुटत हाँकती सर कोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुर है की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो तू

मन मुखहीन होची मत झूठी, मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती, राम जपत मन

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना।

अंतर रतन पदार्थ हित को दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर। मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले सांत पाये। दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई पर फूले।

मन मुख प्रम दूजे पाए लाजे अंतर अज्ञान गुमारे सतगुर दाता नजर ना आवे ना उरवार ना पारे सर्वे कट कट रलिया स्वामी सर्व कला कल धारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उमारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सो सत

सांत वसै मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पै हर जाया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरा ही रह सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन नीक लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

तिल तिल पल पल औद फुल जाते बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले त्यो साकत का आचार संत जना कै

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मा

ते वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक जो जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ। जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ, वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान, करें सोम पाक हिरें।

सगल विनाशी इक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई।

पाए। जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेका किछु।

जगदीश हैं। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जाके लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अन दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लई है रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ जी।

और ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल दिनाशे जो आवे हर संत सरन। आप जपे अवरे

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

मानस जन्म गुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निकसो, तव लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई। कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई।

अमृत नाम स्वामी तेरा, जो जीवे तिसी कृपास, जन्म जन्म के किल विखनासे, आगे दरगे होए खलास, शरण तुम्हारी आयो करते, पार ब्रह्म पूरन अविनाश, कर कृपा तेरे।

मन कहाँ लुबाइये आन कहो, ईत ऊत प्रभ सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे, सगल

पाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संग के पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पै सुखदाई।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर शिव मन माना साध कृपाल।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुन।

दूप सहामा गोविंद भजन के निरपैवा पारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रह बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अजय अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपा

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हों बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

स्वामी और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे में रह माते सौ नानक मैं

कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेक दृष्टाना, जो कहो मुखों सेवक इन बैसी है, सुख नानक अंक।

हाँ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन में खो भैया गुरमिल हर हर कया पंच दास गुर वसगत कीने मन नहीं चल निर्भया आए न जावे न कत ही डोले फिर नानक राजया सारंग महला पंजवा प्रभ मेरो इत उत

काट लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मात पिताई किस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल

की जय। सुखदाता प्रभु ध्यान यह रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पक

जीवन अविनाशी कहो नानक मन आनंद भया है काकी जम की फांसी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझे।

जीवन पाया बिनती नानक हिसार है सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुरु बचनात कमात कृपा ते बहुर न कथु उधायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वछल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे।

मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए।

आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुम्हारे जानियो कोट जोत ओआ की बात न पूछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो।

रहाओ। आप महाजन आपे पंचा, आप सेवक के काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकुर अंतर जाम। आपे पत राखी सेवक की, आपकी ओ बंदान, आद जुगाद सेवक की राख है, नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा, तू मेरे मीत सखार प्राण, मन तन जियो पिंड सब।

जन का संग पाई वड भागी नानक संतन कह कुर्बान सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिकी तुम तारे सुमत संग।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

साध की संगत विनस्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरे गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर कह जाइए बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ गुर का नाम जपियो दिन राती गुर के चरण मन धारिया गुर की तूर करो नित मज्जन किलविक मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा गुर अपना नमस्कारिया सर्व फला दीने गुर पूरे।

मन बासत फल पाओ, सहु नानक लाभ लहा ले चालो, सुख से ती कर जाओ। सारंग महला पंजवा, ठाकुर तुम शरण आई आया।

एक सस्यो लिवलाओ कहु नानक ताकी सरनाई देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाई है।

अच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पंडारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बिचारा कमन मूल से मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद बिनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जो राते प्रभु।

जियो प्राण आधार तेरा, तू निथावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम, सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन, नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार, सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिए हर तेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, और परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या देखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जा के रास सर्व सुख स्वामी, आन ना मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, दिल जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई।

कोई चतुर सियाना पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पै मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्योमीना जल स्यो उर्जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चात।

सिमरन स्वामी एहो साधको आचार चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

सरना है, जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो, चरण संग समाए सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले।

कर जोड़ नानक दान मांगे, साध संग उधार सारंग मेला पंजवा, विराजत राम को प्रताप, आद बियाद।

निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो किरपाल दीन दुख बंजन तेरे संतें की रावार।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर विस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। शांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल शरण।

सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा माई री चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बहुर जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पा।

दुतिया पाओ सब लूहराओ, त्याग गोपाल अवर जो करना, ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो, काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता, बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक, मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण।

आओ दृष्टो कछ संग ना जाए मान त्याग मोहा के कह हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निधान सगल आस पूरी।

प्रीतम प्राण पै सुन सजनी दूत मोए बिखाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल भई मन भाई सहज समाध सदा लिव हर्ष्यो जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपो विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोह लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी, साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

हर रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मेल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकथ।

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाये, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, और कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते।

हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कै शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाए दूजे, बिन शब्द है बहुरानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल।

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जाका विस्तार, सो बाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने न जाहे, सोग हरक दोहू में नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करें, अनक महेश बैस त्यान करें।

का दाता कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग कट

अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचाय उन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

करें मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

मूरख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्द उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत न जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख न जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ती आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया।

नाय मने दुर्मत गई मत प्रवृति आया ना मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांप उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरुमुख।

मैं अंधे नाउ सुजाता। जेता आखण साही सबदी पाख्या पाए सुवाई, नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वड्याई। महला

फूल बोल बोल पौकना चूका धर्म विचार जिन जीवन दे आपत नहीं मोया मंदी सोए।

जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सके कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया, श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

नानक जो देवै तुसे ना जाननी, मनमुख दुख पाई श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके, देशंतर पव थके पेख तारी, दूजे पाए नाव कदे ना।

नानक जमपुर बदे मारिये यो सन्ने ऊपर चोर महला पंजवा सरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाओ नानक नाम भी हो।

नानक नाम विसारे आवन जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचे दान हर देह सुभाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्त आए, खिन पल कड़ी ना।

होवई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपे ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए, हर तिसे त्यागो संत जनो जो अंते ले चलाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए। जन नानक तृप्त है गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी, गुर पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया, तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवै मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रह लिवलाए महला तीजा। दात जोत

रावण हूँ ते अधिक सतर्पत छिन में गए दिलात। हर के संत सदा सिर पूजो जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद के सत्संग मिलात। मात पिता बनता सुख संपत अंत न चल संगात, कहत कबीर राम पद।

देहि नानक रुत सुहावी साई बिन नामे रुत के ही मलार मैला पैला करो बिनो गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन कंकोर शीतल मन मोरा।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पय उत ही ते, उत ही मैं समाया, अधिक स्वाद

जिन तन तिर का साब न जानिया, साबिल को बदन कुमलानी। कई निराशी कर्म की फांसी, बिन गुर कर्म तुलानी। बरस कना मेरा फिर कर आया, बल जावा गुर अपने प्रीतम। जिन हर प्रभ आन मिलाया रहा, नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों। हम जिन पगत सुहावी, मुक्त पै गुर बरस दिखाया। जुग जुग पगत सुभावी, हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा। तू मेरा हो तेरा, सतगुर मिले निरंजन पाया। दौर न पव जल फेरा, अपने पिर हर देश विदासी। तो तन साथ सिगारो, अतुल निरंजन सो सत साची। गुरमत नाम आधारो, मुक्त पाई बंधन गुर खोले। सबद सुरत पट पाई, नानक राम नाम हृद अंतर। गुरमुख मेल मिलाई, महला पहला मल्हार। पर दारा पर तन पर लोबा, होमे बिछय बिकार। दुष्ट पाओ तज निंद पर आई, काम क्रोध चंगार। महल में बैठे अगम अपार, पीतर अमृत सोई जन पावे। जिस गुर का शब्द रतन आचार, रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने। बुरा पड़ा संसार, शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये। सत्संगत गुर प्यार, एन सलाहा हर नाम प्राप्त। गुरदाता देवनहार, गुरमुख सुख सोई जन पाए। जिसनो नगर करे करतार, काया महल मंदिर कर हरता। तिसमें राखी जोत अपार, नानक गुरमुख महल बुलाये।

मानसता तल तत में सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटे से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम।

जिस ते हो आतिशन समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बख्शे तिस बिघन ना कोए रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत ना भाए। गत मुक्त कदे ना हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुरु तोतिए मन मर रहे हर नाम वसे मने।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए, सब जयकार कमाए, नानक नाम सलाए।

जम काल गुरमत सत्संगत ना बिछड़े आंदन नाम समाल सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पलक पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दे हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चुकलाए।

एक को एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामे सब उदरे, गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

सबद सुख अंतर सदा निभय तेरे आल राव। मन मुखता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ ना आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम प्यार।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदुष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

हौ तुन जम के सब लागो पाए, हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ, माया मोह अज्ञान।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है, गुरमत अंदन।

पाए, सतगुरु मिले का मिले सुवाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जल रहा भूख न जाए, बिन पागा नाम न पाया जाए, बहुविरथा का कर्म कमाए, त्रैगुण बाई वेद विचार, बिखिया मैं बिखिया।

गुरपुर हूं मैं तीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे मला।

हर जन हर कारे लावे, सतगुरु हर हर नाम बिरावे। हर बोलो गुर के सुत मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा शरीर, सब दुखि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहु विदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट ना आवे, सतगुर देव प्रतक हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले तुस जन के। जो हर चरणी चित लावे, मल्हार महला चौथा। जिनके हियर बसियो मेरा सतगुर, ते संत पले पल पांत। तिन देखे मेरा मन बिगसे, हों किन कह सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलो दिन रात, तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी। जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ, हर के दास साध सखा।

प्रीत नाही हर हृदय के कपटी नरमित कपट समाक तिनको क्या कोई देख वाले ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सब संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंग दिन अंग भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिन का दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंदिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वो आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभ कृपा धारी, दिख दुखदा पाब लया।
1: मल्हार महला चौथा। गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हूं मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लहे दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

खीर आधार बार्क जब होता बिन खीरे रह न जाई, सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बार्क पिता प्रभु दाता फूले बार्क अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बार्क बपरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी, नवनिद नाम निधान गृह तेरे मन बाँचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे, मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया, सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरम्भियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी। रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निर पाए जब त्रय आए।

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहा।

जगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हों एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पै मन निर्मल गुण गाए रंग रांगी एहो मन दे किए संत नीता कृपाल पै बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जी कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती एहो मैं की टीठाई तई निमाणी शरण एकता की गुर सब गुर पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल ना लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा।

कर कृपा किलवित सब काटे, नाम निर्मल मन दिया, गुण निधान नानक मन वसिया, बहुर दुख न थिया, मल्हार महला पंजवा, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजे, दयाल अनुग्रह तारे, रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आशा, संत जना तह करो बिनंती, मन दर्शन की प्यासा, बिछड़त मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दीजे, नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभु मेरे कृपा की जय, मल्हार महला पंजवा, अब अपने प्रीतम स्यों बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई, उदोत पयो पूरन पावी को, पेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल विनाशे, पार ब्रह्म लिवलाई, करो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण ध्याई, मल्हार महला पंजवा, तन हर बरस सगल जग छाया, तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ, मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी, पार ब्रह्म ध्याया, साध संग जन्म मरण निवारे, बहुर न कतु धाया, मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया, मल्हार महला पंजवा, बिचरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितें उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाओ, जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम, तिनको अंतर नाही, जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा, से मुए मर जाही, मन तन रव रहा जगदीशर, देखत सवाह जूरे, नानक रव रहो सब अंतर, सर्व रहा पर पूरे, मल्हार महला पंजवा, हर के भजन कौन कौन न तारे, खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा, तन साधु संग उदारे रहाओ, देव कुल दैत कुल जग किन्नर नर सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे

शरण गही अचूक अविनाशी, किलबिक का दे है छाट कल कलेश मिटे दास मानक, बहुर न जोनी माट मल्हार महला पंजवा, बहुविध माया मोह हिरानो कोट मदे को बिरला सेवक, पूरन भगत सिरानो रहाओ, इत उत डोल डोल श्रम पायो, तम तम होत बिरानो।

दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओठ जीवे दास तेरे, नानक प्रभु शरणाई। मल्हार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवि जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे, नाम महारस की जय, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय।

महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुरु बहुत पग जल तारनहार, गुरु पेटे ना हुए जोन अवतार, गुरु की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

भगत जोत उदपाणे नानक तिन कै सब कुरबाणे मलार महला पंजवा परमेश्वर होआ दयाल मेघ वरसै अमृत धार सगले जी जंत तृप्ता से।

रासनहार सदा मेहरवान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाये वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभ सत अरदास राग मलार महला पंजवा पड़ताल कर तीजा इको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु मनार प्रे दियार स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार।

को प्रीतम थिया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविद रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रब एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

मिलाए शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल करे बिल लाए कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाए मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाए खिन तिल रह न सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तनवाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी भगत रति हर खाई प्रयोग प्रयोग करे समय है जेती गुर पावे।

जियो है सोई कट कट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही परगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेहन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंध नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सरद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई।

दुर्गै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो

समाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दी से सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आर

मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचों सकत गवाए अचर चरै विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए लाहा हर सत्संग।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने।

हर कृपा ते सतगुर पाये ते तैसै सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करे विचार मुक्त कदे ना हो वई नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम ना लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मो

हर सिउ रहा समाए, मल्हार महल आतीजा, अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

चित कट ना मैं नाम निवास, हों मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरसी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए।

की तुम एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा। गुर मिलिए मन रहसी है, ज्यों उठे तरण सिगार। शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल। अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल। कमल विग से सच मन।

काल उदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना।

गुरु नानक सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंदर तरत विछोड़ चंगो आताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ करम विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वर्ताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा ओला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्ये रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दे लाए आप छपाया।

संतै चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवानिए। सत संगत में लाप जिथे

जिन मन पाओ पाओ होए नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिनकन तैस्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रे बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

सब करण पलाह करे पौड़ी। सो हर सदा सरे भी है, जिस तर्क न लागे वार, आदाने आकार।

गुरमुख पथ सो लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

आए। सच्चा सुनया कन दे तीरक देवै सह सुवाए। इंद्र नो फुरमाया गुठा छ बरलाए। अन तन उपजे बहु कणा कीमत कह न जाए। नानक नाम सलाए तू सबना जिया देदारी समाए। जित खावे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए। पौड़ी हर जियो सच्चा

उलाए, जो जल में कमल अलिपित है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक समाए।

जल फल चहु विश्ववर्षी दाया, खाली को ठाव नाही। एते जल वर्ष दे तिथ मरे ताग तिना के नाही। नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी। नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम पिया।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया अगन उपाई वाद पुख तिहाया दुनिया कैसर काल दूजा भाया रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया श्लोक महला तीजा इहो जल सब कै वरसवा वरसे पाए सुवाए से बिरखा हरि आवले जो गुरुमुख रहे।

है आपे दे मनहार। श्लोक महला तीजा, बाबीहा इहो जगत है मत को परम पुलाए। इहो बाबीहा पशु है इसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए। नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मलार शीतल राग है हर त्याय शांत होए।

हो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किच आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुरु सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवानी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की सिख जाए महला तीजा। बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असं

होई। इक राजे खान मलूक कहे कहा में कोई, इक सवा सदावे संत धन दूजे पट खोई। इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई, बिना में बाजारिया पिहावल होई। पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा। रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जले हर मान का हब्बे मणि मखन, नानक जो प्रभ पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी। सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया, अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे का लिया। कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया, गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिर बेता लिया, पशु मानस चंप लेते अंदरों का लिया। सबो वर्ते सच सच्चे सगर निहालिया, नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए, मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छह बदलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए, नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या अमृत जल पल न पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए। नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक मन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही, एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही। एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही, गिनना में तन चार क्या कह रो वही। सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा। बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार, मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार, नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा। बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जे सो करे पुकार, नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख ना ही नाम ना तीरथ नाया। हथी सिर खुहाए ना पग कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया। तिन जात ना पक ना कर्म जन्म गवाया, मन जूठे वे जात जूठा खाया। बिन शब्द आचार

तीजा गुरमुख मल्हार राग जो करे तिन मंकन शीतल होए गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए मंतन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए चंद जुग में कोर अंधार है मन मुखरा न कोए सेवड पागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वर्ष कर दया लोका मन उपजै चाओ जिसके हुक्म इंद वर्ष दा तिसके सब बलिहार जाओ गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच कमाओ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द मरे मन मार तन जने दी माया डर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया पूछ ना सके कोई जा खसने भाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया श्लोक महला पहला कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज चूहा थड न मावई तिकल बन्ने छज देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जा कई किथे जाए।

सुख पाया अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रजे नाही, मूरख पुख ना जाई, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ ना पाई, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला, शरण करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडी है, जित सिर चोटा खाए, जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, तेनर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तन लगे।

जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाव अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ किल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा चै सिकदारा एना पर्याना।

कौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन पहुँ ना कटी है नाम न लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे

रास आप छुटे न छूटी है, नानक बचन विनाश महला पहला। मास मास पर मूर्ख चगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। गेंदा मार होम जग किए, देवतिया की बाने। मास छोड़ बैस नक पकड़े, राती मांस खाने। हर कर लोकानो दिखलावे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। नानक अंदेशों क्या कही है, कहे ना कहे बूझे। अंधा सोए जे अंध कमावे, तिस हृदय से लोचन नाही। मात पिता की रक्त निपन्ने, मच्छी मांस न खाही।

ही मैं समाया एक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुर किन्हें न पाया देश विसंतर पल थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवागौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक मा

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोध बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे प्रहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

कम करीन तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया, पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया।

काल कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावना जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगिया।

अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग। तर तार अपवित्र तर मानिय रे जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तिह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा। अब बिपर प्रधान ते करें।

नहीं हापियो, कहो रविदास पयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नड़ा चौक दे महल।

बल बल बल सात जना को मिल संगत पार उतर आ रहा हो। हर हर कृपा करो प्रभु अपनी, हम सात जना पग परया, तन तन सात जिन हर प्रभु जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वत वत करिया, ज्यो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, ज्यो साबन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सतगुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किलबिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव, नाना रूप रंग हर केरे, कट कट राम रवियो।

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंधप हर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गढ़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम।

राम रविया कट अंतर। अखिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काड लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, कास्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरम पर स्वामी, तू आप

नाथ अदृष्ट अगोचर नाम त्याए सत्संगत मिल साधु पात हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जप्यो अकथ कथकात हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करो कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद मन जापो राम गोपाल हर रतन जवे हर लाल हर गुरुमुख काटक साल।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो पाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ लादो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार आस

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारन सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी मया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कहो नानक ताके बल जाओ, कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पे दयाल, सहु नानक कौ छू।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जस सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ

सुख पाया कृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुन गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

कानड़ा महला पंजवा करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कतिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाई है।

महापवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत।

उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कप

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। काट काट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो,

सा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीरे।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाया।

काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतित पावन शरण आयो उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पा।

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किस संग न चाले।

बरना साकू एक फुलेर है, दर्शन प्यास बहुत मन मेर है, मिल नानक देव जगत गुर केर है। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निगरै अत रहत बिटंगा हौ रोग ब्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

नहीं उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ। जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

मो मगन अंका प्राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

महला पंजवा करियारवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले पोले रहाओ संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो, ज्यों ज्यों जपै।

राम नाम एक तिल तिल गावे मन गुरमत नाम समावे गो नाम सुने नामो मन भावे नामे ही तृप्तावे गो कनक कनक पहरे बहु कंगना कापर पात बनावे।

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग काष्ट लग, शब्द गुरु हर पावे गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवे गो। दिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावे गो। खिन खिन नाम दे वड्याई, सतगुरु उपदेश समावे गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

खरे खरोए बैठ तू उठत मार्ग पंथ से आवेगो सतगुर बचन बचन है सतगुर फादर मुक्त जनावेगो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवेगो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावेगो सतगुर दाता।

उब नगर में सबला गुरखिन में मार कडा रे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी हर

सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

लग संगत नाम से आवे गो, नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावे गो। छक्का पहला।

लगतरों तिन के पाए। बिनवंत नानक शरण स्वामी बड़ भाग दर्शन पाए। मिल साधु नित पजय नारायण रसक रसक स्वामी गुण गायन। गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे जन्म मरना पा गए। सत्संग पाये हर से आये बहुत दुख ना ला गए। कर दया दाते पुरख विदाते संत सेव कमायन। बिनवंत नानक जन पूर बांचे हर दर्श सहज समायन। सगले जंत पजो गोपाले जप तप संजम पूरन घाले। नित पजो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सवाया। गोविंद गाये नित ध्याये परवान सोई आया। जप ताप संजम हर हर निरंजन गोविंद तन संग चाले। बिनवंत नानक कर दया दीजे हर रतन बांधो पाले। मंगल चार चोज आनंदा कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुल बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौ मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ।

रंग परंग सिस सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावणी, सब तेरी जोत ज्योति विच वरते, गुरमति सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सभार, गुर तुठे हर

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे ए आणिया, हर तुम बड अगम।

सब सिद्ध उपाय जी जंत, हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत, जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा, हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर, सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर पीर। पौड़ी, हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला, जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला, नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला, सो बुझे जिस आप बुझाए सी, जिस सतगुर पुरख प्रभ कौला, सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा, सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए, जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड़ पागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर सबदी गोविंद गजिया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वाहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किछ वखर होए सो वर्णीय तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सत गुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

पहला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वती मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुर बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत ने सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना प्रगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसै वड पाग।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

कौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम

वो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो हो, जिन जगत उपाए सब वो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने। नानक सो प्रभ मैं मिले, हो जीवा सद सुने। पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते।

ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटाकट लीप न छीपे, बंधन मुक्ता जात न दीसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा।

रामा राम राम मैं अंक न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राति। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग ससिया हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर।

मेरे मन जप जप जगन्नाथे, गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके, बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे, गुन कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प अरापो, कोई मिले प्रभ मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम तुझ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभ सुमरे, जन नानक के प्रभ समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहु जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के तब राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने, ताते जन को आनंद भया है, रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने, तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने, जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीर हीर विदाइए। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सदसंगी। कल्याण महला

जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाये, साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सके, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे, रहाओ नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी, अनाथ दी

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवै ना लावनो। प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद। रामा राम रामो।

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दीजे बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जोत

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझ।

मन तन अर्थ करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ करोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म दियो दियो है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब पट पट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख पाडे अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाहु क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। आते बिलम पर

जय जेवद भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जगतरिय सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जय अज्ञान अंधेर महापंच बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम रामे ते गत की जय सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला शौक दे कर पहला नाए तेरे तरणा नाए पत पूज नाओ

अवर सियाणत सगली पाज, जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ। नौ तेरा ताण नौ दीवान, नौ तेरा लश्कर नौ सुल्तान, नाए तेरे मान महत परवान, तेरी नजरी कर्म पवे निशान, नाए तेरे सहज नाए सालाह, नाए तेरा अमृत बिख उठ जाए, नाए तेरे सब सुख वसे मन आए, बिन नावे बांधी जमपुर जाए, नारी देरी कर बरदेश, मन किया खुशिया की चैवेश, जा सदे ता तिल न पाए, नानक कूड़ कूड़ो हो जाए। प्रभाती महला पहला, तेरा नाम रतन कर्म चानन, सुर्ख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे, सगल ली जय खोए, यो संसार सगल विकार, तेरा नाम दारू अवर नास्त, करणहार अपार रहाओ। पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़, तेरे लाल कीमत तापवे जा सिरे होवे होर, दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख, जित मुख तू सालाई है तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार, जित तन नाम न उपजे से तन होए कुवार। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म न पाया, बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई, रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी, तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा, जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे, एते गुण एतियां चंगियाईया दे न पछोतावे, तुद सलान तिन तन पल्ले नानक का तन सोई, जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई। प्रभाती महला पहला, जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा, सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा, औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ। जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला, शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला, जा के बर्त नाही नेम नाही नाही बकबाई,

चित सुरत समझाई, संत को परम संत मिलिया, नानका बुद्ध पाई, प्रभाती महला पहला, कांका कहया दर परवान, दिख अमृत दो संतर जान, क्या कही है सर्वे रहा समाए, जो किछ वर्त है।

खोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक।

शिव कर जाइए। गुरुमुख नानक सच समाइए, गुरुमुख निज पद पाइए, प्रभाती मैला पहला। गुर कर सादी विद्या विचारे, पर कर पावे मान, आपा मध्य आप प्रगासिया, पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै तै मांगो, देह अपना नाम रहाओ। पंच तस्कर कामत राखे, चूका मन अभिमान, दिस विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कनक कर, प्राप्त पाती धान। दूध कर्म संतोष कियो कर, ऐसा मांगो दान। क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी, सहजे बछड़ा खीर पिए। सिफत कर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे, प्रभाती महला पहला। आवत किने आवाख्या, जावत क्यों राख्या जाए। जिससे हुआ सोई पर जाने, जा उस ही माए समाए। तू है वाहो तेरी रजाए, जो किछ करे सोई पर होए बा, अवर न करना जाए रहाओ। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है। तैसो ही एव खेल खत्म का, ज्यों उसकी वड्याई। सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी,

एहो रहा निर्वाण, जिसते होआ सोई कर मान्या, नानक गिर ही उदासी सो करवाण। हरवाती महला पहला, दिस्त बिकारी बंधन बांधे, हौ तिस कै बल जाई। पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन वार।

करवाण ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक

जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए, जन्म मरम दुख काटी है नानक छूट सुनाए। प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा, आसा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए। जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहा, कहो न बूझे अंग न सूझे।

भगत करी कराहे मोर, अंतर वसै चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए। परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, और न रांगन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा। मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विधि जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदस मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया। अत रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसन रसाए राते, रब रहा प्रभ सोई। परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त मैं पीछिया।

पाए सब जन मिले से सूचा चारी साची दरगे माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साथ समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराशित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरुमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरुमुख आवे साध मना रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरुमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आत पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया राग करवाती महलाती जा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरुमुख विरला कोई बूझे सब दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पवित करो दिन राती इस जुग का लहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी आपे लेहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विट्टो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड़ अवर न दाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन

ना सो हुआ न होग। हर जी ओसना तेरी सरनाई, ज्यो पावे त्यो राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिनकी करे कृपाल, आप कृपा कर राखो हर जियो, कोई ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना हो कटे न जाए, जो हर छोर दूजे पाए लागे, ओ जम्मे ते मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिना दुख पूख किछ नाही, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाए। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आओ, जब लग जी प्राण। गुर शब्दी मन निर्मल होआ, चूका मन अभिमान। सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर के नाम समान। मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए, हर का नाम सदा सुखदाता।

कोई गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वस्या विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने वित्तो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आते पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्त विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्त चले नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास इको ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद चारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन भारी मुफाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय नवस्यो ऋण बादे बहु विदबाल सत्संगत मिल मत बुद पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल
दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक गावत सुनत बहु पे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक ऊजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रुनैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी मीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम सदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदर हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने तेसा कुत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना प्रम प्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभ वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभ कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपिबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम हर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोभ लुवाने पुत कलत मोह लुभबा तिन पग संत न सेवे कबहू ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास पड़ताल महला चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ सच न जान
सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, चिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार, सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल नीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहां सखाई जै कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस राया सोई जाने, देख देख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभ सोए, सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी।

मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोहे नहीं माया सड़त पलत जिन गुरे सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हवारिया महामुक्ते किया ज्ञानी गुरपूरे की अकथ कहानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वडे पाग पाये हर सेव प्रभाती महला संयवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुख मिटाया हम बारिक शरण प्रभ दयाल अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव पाप पाप बिन से किन भीतर तय कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म आरादी अपने सतगुर के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाये लाहा खाट होइए तनवंता अपना प्रभु ध्याइए आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया परबाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसग नासे सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगह शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे

लेस जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सद बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाए वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

पाए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाइए वड पागी।

गुरपुरा पाइए वडबागी, दर्शन को जाइए पुरबान रहाओ। किलगित में तो शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, ओट मदे को विरला दास, जल तल मैयल पेखे परपूर, नानक उदरस तिस जन की दूर, प्रभाती मैला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पर तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभात।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हो मैं मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख में तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस्याख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार,

पाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संता।

गुर का शब्द कर्म है सार। हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा। हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा। प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा।

कर गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभासी महला पहला।

दिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब भगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने, इहो मनु आखिन ऊप प्याली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया तित नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए।

परख खजा में पाया जात वर्ण से पै अपीता ममता लोभ चुकाया नाम रते तीर्थ से निर्मल दुखों में मैल चुकाया नानक तिनके चरण पखाले।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंगल ना होए। हर मंगल हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंगल सब दे सोहना कंचन तोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे मनमुख अंग गवार। जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए। सात रते से उबरे दुचिए दूजे भाए। हर मंदर में नाम

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरुमुख लेन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरुमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें होमे मेल उतार। सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरुमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरुमुख सहज तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने हर राख्या उधार। ऐसे ओथे सुख गणा जप हर हर उतरे पार।

मन मुख दर टोई नाल है, पाए दूजे कर्म कमाए, त्रिग खाना त्रिग पहनना, जिना दूजे पाए प्यार, दुष्टा के कीड़े दुष्टा राते, मर जमे हुए।

तरह सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज

है काला, अंतर कपट पुरे बेताला, वर्मी मारी साप न मुआ, प्रभु सब कुछ जाने जिन तू किया, तू वर काप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया गे के नस्ता, देश छोड़ पर देश धाया।

वेश ना पाये मह दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अन तेरे ता दुख दे ही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला,

गांडा जब तब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न पै गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा।

कलापी संभरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया

करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो पर

हृदय अंतर कर तलकाती, ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवत बंद चिरामन, क्रूर दुष्ट रता निस्वादन रहाओ, नित प्रति स्नान शरीरं

तिलपूजस चक्र गणेशं निस्जागस पगत परवेशं पगनाचस चित अकर्मं एलं पटनाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूर कंठ रुद्राथं रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत् न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिन सत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

జనమస జాద్బ్రహ్మణా విందతే సాగరం సంసార గురు ప్రసాదీ తరేకే।

अब जोग सवदन ज्ञान सवदन वेद सवदन ता ब्राह्मण खत्र सवदन सूर सवदन सूदर सवदन प्राकृत

का विनोद सुत कतंच भात मेट हित बंधव कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत।

चतुर दिशे दुखम थान बसंत पूछे मैं सिमरंत मरण सदा चिते होवंत आ गया भगवान पुरखे नानक की सास अकर थके।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निरत मोहं अलप बुद्धन रचंत बनता दिन उदसाहन जो बन बेहतर कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

भरे। दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जीव प्रित पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं।

होत। अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडन ऋद बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन्मे मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

बते विपरीत बुद्धन मात लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते।

शुद्ध दया निधान निगमन, नच गुण गय नाम कीर्तन, नच राग रतन कंठन, नह चंचल चतुर चातुर भाग उद्दम।

नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्गराजनि नच दुर्लभं भोजनं व्यञ्जनं नच दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे नच दुर्लभं सुतमित भात बांधव नच दुर्लभं बनिता विलासे नच दुर्लभं।

आजाभोदंत कंदमूलं बसंते समीप के हरे तत्र गते संसारिनानक सोग हरतं जा।

ख्याल खरे विखम स्थान मन मोह मदरं महा असाध पंच तस्करे हित मोह भय भरम।

समवादन अवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल भजंत तृण समान भृग जन मने।

मजारुदर दुर्गंधा नानके अथ गर्भेण अज्ञानड़ो परमाणु पर्यंत आकाश है।

हर लगदो मित्र सुमितो विदारण कदे न चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग के तो अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तब

जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमख के प्रेम पर वार वार देव सरबे मूसन।

जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश नरक परे।

ऊंज मन माया ममकारे कबीर अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले पर बात जो न

काल पाछे कछु न होए बात, जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया, जैसी तोई लाख। दिसे चंचल बहुगुना, मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरै बित कबीर सेवा को दोए भले।

साथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्रीत सुजान स्यो, बरजे लोग अजान। पास्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कारज साडे।

कभी केवल काची धात साबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोये सारे

कबीर राम रतन मुख कोतरी पारख आगे खोले कोई आए मिले गो गाती ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन

जीवन के पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लीलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे भगत

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुह खाद तिरम की पाके से की खेले काठी सरसों तेल कह ना खल पई ना खेल। तूंदत डोल है अंग गत अर चीनत ना ही संत कहनामा क्यों पाए बिन भगतों भगवंत।

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम ओईदा राती वड्डियां तुक तुक उठन पास सिज तिना दा जीविया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा जलै

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया की चलसी थके कवले कल। फरीदा इत सिराने तोए सवन कीड़ा लड़े मास केतड़िया।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आती है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर गह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह सों चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाज महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले केई पाये ने जिना प्यारे ने कंदी वहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वहन सिदाऊ गौ करे फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी जेड़ा कपर वात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े नो कप

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवे दिसे जो दरिया वैता अगे दोजक तपया सुनिए हूल पवे कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर देवे करवा।

हलवसन रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला सज कर कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सौ मिले से वेस करे ओ। महला तीजा काय पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जिना

कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ। फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए। महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मुमताज अल्ले से ती रतिया एहो सचावा साज। महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हन कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है परो साही लाल पचास, तेतन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कमल को अखर कमल गुण कमल को मणिया मंत, कमल को वे सोहा करी जित वस आवे संत। निहन को अखर खन गुण जो बामणिया मंत।

पान नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो भर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, से जन्म मरण दूं ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख पूरा तन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तें प्यार, हर गुरु नानक जिन परसयो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो, सचे तख्त निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उधारन सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंदन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो बीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो मारो देहे न देहे ननहे ननीता माया मत कहा लो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन कीत कीत दे ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एहद करत फौज तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचतावर बहुत जौन भम्यो अत भारी छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन

ब्रह्मागत शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस।

द्रस्यो जम दो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे से नाम के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा बिन सजाए हर।

दिखे मन दर्श मग पावत जरो न जात रहो जन धूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु भाती बिचरे अन शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीरथ बहु घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर फटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता।

गुण वर्ण चार फट दर्शन ब्रह्मादत स्मरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेबा रस आद अंत लेव लाज धुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान अंतर जाने कब कल सुजस

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस नाम।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

जाकु दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौटीरथ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञान जाने अकल गत गुरु परवान जाके दृष्ट अकल ठाने बिमल बुद्ध सुठाने पैर सील सन।

लैणा जगत गुरु पर सुमुरार, दृष्ट भरत तम हरन दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रित पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अमृत।

गुरु जगत सुयन सुयंग रो राज जोग लैणा करे। सदा अकल्य रहे करन सिउ इच्छा चारे। गम सपूर जीवने खवे कस बिमल विचार। एह तत जानियो सरबगत अलग विद।

गरल नाश कन न थयो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिनास जागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमत लैने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम सब

तीरथ रव फिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर।

सोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझ से ध्याई जति कपि।

गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत भाव तारन अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखियत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम ध्यावे देव कैपीश अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अत हो सोए रस्य नहीं जातो मुखो भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सचो करम पल जोय कर ध्यायो परसो गुर सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

सरवण गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सिर जालक भणे जो सिर ने गुरु अमर नितें।

के नर उठत बिथते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सकते नर जालत भणी गुर अमरदास सो पर समझे तई पढ़ो एक मन धर्यो एक कर एक।

सुपन एक पर तख एक एक समेनो तीस एक अर पंज सिदे तै तीस नखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास।

गुर अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास

लहे जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद।

जो गुण अलख अगंत ने गुण अंत न जानो। बोल तो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे, गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पाशरण। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

धर्म धन कर गयो भगत शील सर लड़यो धन गोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह अपत्र

एक मन पुरखन अंजन धाओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ। गुण गावत मन होए दिगासा, सतगुर पूर जने की आशा। सतगुर सेव परम पद पायो, अदना से अवगत दयायो। किस भेंट दारिद्र न चमते, कल सहार तार।

छूटत प्रवाह अमेव अमरात अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन उबजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण ठकुन हरदास तने गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़ बिमल।

निरंजन खरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाय भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित

अपर भर उपायो अपार हृदय अंतर धारो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारो सदा चाहे हर भाई तीम रस आते जाने सतगुरु कह पर

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

نام ہر دے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकार अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुर्द धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके

जगत भयो आनंदे तारन मानुख देखियो प्रकाश। गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत बस कीनी जमत ना त्रासे।

पांव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सखन खन ससुर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत।

गुर अमर प्रवास कच्चो कंचन भयो शबद गुर सरवण्यो सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल न दर सतगुर।

काठो सीखन सतगुर कियो, दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया ते पश

गुरु गुरु ऐनिस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद मैं धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तैने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुध हृद सिद चाहते गुरु गुरे गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन सुजो दंज सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर।

जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो मन दास आस जगत गुरु की पारत भेत परस करो रामदास गुरु हर

शब्द हर हर जपे, नाम नवनिध आपे, रसन ऐनित रसे, सत कर जानियो। उनु प्रेम रंग पाइए, गुरमुखे ध्याइए, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। वचन गुर हृदय धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उधरो, द्वार हर मानियो। जो तो सब सुख इत उत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

शिव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण करे। 33 गुरु बचन सुन कन रे, सुन तरे ते संत हित भगते। गुर गुर करो तरो प्रहलाद, गुरु मिलत मुन जन रे। तरे नारदाद संकाद हर गुरु मुखे तरे। एक नाम लग तजो रस अन।

श्री गुरु साहिब सब ऊपर करे कृपा सतयुग जिन धोकर श्री प्रहलाद भगत उधर।

हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण भगाए आई ही ये परतीत, परतीत ही ये आई जिन जन के

अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, देव दृष्ट कारण करण सत गुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया

करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा दिद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जगदीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद वरनं। सतगुरु गुरु सेव

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

ओंदनियो भले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुर न कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बराय।

सच जान मंत्र एह नित बातुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार धो हमें का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

ही पाता। गुरमुख संगत सवे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे साज तू और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधार न धावत है मथुरा भन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुख को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाए कृपा।

अंतर्गत तेज कुंचे लोक प्रजा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारो संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उनकी रतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध ना छोड़े।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस कियो ना जगत कोई, आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे, अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखोत्तम आपार परे, करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन, मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा शुभ भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत पर।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जैसे तु सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभु पाइए तो सतगुर सिमरो नरो।

जै तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद

जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तो जस भगता कुल सोदी गुरु राम दास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

गुर अर्जन कर चरै जन तै कलश दिपायो। सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं, निजा नाम निशान सतगुरु।

कहे मथुरा अमृत में मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जग

कल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उधारन। बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारन। निर्मल वेख अपार।

नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मिलाए। कलर करी छपड़ी कौआ मल

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हों हों करते खप मोए, खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया, तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

पाए, बौरस सालने सवार दी खटवस मीठे पाए। क्यों बाणी पगत सलांदे हर नाम चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोचदे।

सतगुर के पाने जो चले तुत पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया तित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर वस लगे।

0: नाम रतन पर गाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन लखते फिरे दिल नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुख।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए। सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मने आई। नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए। आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए। हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए। नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास। हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगह शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चाले सतगुरु भाए, सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर है नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नाम

आनंद सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जमकाल नेड़ ना आवई आप बक्से करतार नानक नाम रते से तनवंत हैन निर्तन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ गुरमती नाव मन वसै सहजे सह समाओ वड पागी नाम त्या

मन आवन जान ना सुजई ना सुजे दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा भो पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटुंब तरे परिवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन से लुजै जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार नानक गुरमुख सोहने सच्चे दरबार हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल तन भगवंती नानका जिना गुरुख लद्दा हर पाल वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहारे जाओ से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब

रंग किया तिसे विटों कुर्बान आप छोड़े ता सो मिले सच्चा हो विचार हो मैं फिका बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा आम दिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर कर सके विचार नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेस नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पड़े जुग चार नानक साचा फेटे हर मन वसे पावे मोह द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित पुलिया आप समझाए सी।

पहलवान सुकड़े असंख माया चूसी कारणे नानक से जगने जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख पुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका।

جگت پکھاری پھر تو ہے سب کو داتا رام۔

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो। के वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरी।

मालरा कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

दुख सुख पाइय है, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइय है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे पुज।

साच नाई पाखिया भाउ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित जिसे दरबार मुहों के बोलन बोलिए।

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नौ रखाई कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक।

वेद सुनिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागे सहज ध्यान नानक भगतां

छुताए कागज कर्म ना लिखण हार मन्ने का वह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की।

दरियाओ कुदरत कमण कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खा।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पा।

कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माह कवण जित होवा आकार वेर न पाया पंडती

कोई जान करता सिर ठीक कौ साजी आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोई बहुता कही।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार।

देवतियां दर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे हैं खानी चारी गावे हैं खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे हैं जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिमें चलावे जिव होवे।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ै थीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाट घड़िय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब को।

मांस खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव।

तुझी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा।

सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूरख मुग

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेस, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विसे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ।

काल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर हो मैं कंडाही, ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडाही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अवनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम

कै घट नाम निवास जित बोलिया पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भाव है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना अवर सवाल्यो काय नानक नदरी बाहरे राचे है दान ना नाय श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दिता देवन हार मत

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहारै जाउ ता मन खीवा जानिऐ जा महली पाए थाउ नाउ नीर चंगियाईयां सत परमल तनवा।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह घस मस कर।

आखण आखी है, आखण तोट ना होए, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है मन बसे सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखियां हर जप एक पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए। निज कार महल पछाणिया नदर करे मल धोए, बिन गुर मैल ना उतरै बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिया अवर त्यागै आस, नानक देख दिखाइए हौं सत बलिहारै।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

संत ना भावे ता सब अडंबर कूड, सब रस भोगण बाद है, सब शिंगार विकार, जब लग शब्द ना भेदी है, क्यों सो है गुरुद्वार, नानक धन सुहागणी।

फिर लागू पई पूर्व जावै तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द करहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मै आवै जाय रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ पै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिए हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिए लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रा

हर दरगाह पैनाई मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए ज्ञान महारस भोए।

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान भरमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंद पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी।

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अग्न मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

बीज कर्मा करो सलल अपाओ सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

शैतान मत कट जाई, नानक आखै राहे पै चलना, माल धन कित कु संजियाही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारू, आब खाक जिन बंद रहा।

रहै को रहै ना परियै पाई। सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिर जन हारू पांच वक्त निवाज गुजार।

का तू ही कित कहो साहिब आवह रोहे, जे तू साहिब आवह रोहे तू ओना का तेरे ओहे। असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजहो घटे घट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा हुए, आप

कुदरत करे जहानू जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवानू श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहा करे मन मान देवन हारे कै हाथ दान पावे दे ना दे सोए कीते कै कहे क्या होए आपे सच पावे तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही तात तेहा तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज मत

सेती मन रव रहिया, कर ही माहे उदास, जिन्ना हर का साध आया, हों किन बलिहार है जास, नानक नदरी पाई है, सच नाम गुणतास, श्री राग महला तीजा, बहु भेख कर परमाई है, मन हृदय कपट कमाई, हर का महल ना पावई, मर विस्टा माहे समाई, मन रे ग्रह ही माहे उदास, सच संयम करनी सो करे, गुरमुख होए परगास, रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया, गत मुक्त करे मह पाए, हर का नाम त्याई है, सत संगत मेल मिलाए, जे लख इस्तरियां भोग कर है, नव खंड राज कमाए, बिन सतगुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे, हर हार कंठ जिन्नी पहरिया, गुर चरणी चित लाए, तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे, ओना तिल ना कमाए।

सुहावनी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मलावा होए रहाऊ।

पाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार। लख चौरासी जिन सिरी, सब सह दे आधार। निरप

हे निर्मल हे हों सद बलिहार है जास हृदय जिन कह हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिन को लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावे मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगै ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है।

श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जणेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गवाए, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमती हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करहे, गुरमुख नाम त्याई रहाओ, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखिए, जो हर राखे उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हउमै विचो हुमार, तन गुरमुख सो

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजलै, घर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावै बिगसै, हर बैराग आनंद, अन बिन भगत करे दिन राती, हौं मैं मारनी चंद, वड्डै भाग सत संगत पाई।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन धावत तां रहै जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम त्याए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरै न्यू सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होय ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाइए सच सोय असुर संगारे सुख वसे जो तिस भावे सो होय जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होय एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोय नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होय श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लुवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत

सात्व ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हों तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई, जे लोचै सब कोए रहाउ। लख चौरासी फेर पया, कामण दूजै पाए, बिन गुर नींद ना आवे, दुखी रहन विहाए, बिन शब्द पिर ना पाई है।

कराई देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े।

रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है

कमाए जात सत संयम नाम है विण नाम है निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वरतदा।

गुवाई, मनमुख कर्म कमावनी, दरगाह मिले सजाई, मन रे दूजा भाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसै, गुर सेवा सुख पाए रहाऊ। सच बाणी सच शब्द है, जां सच धरे पिया।

सज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीता तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिने आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करी।

मंदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाऊ। हर इको दाता वरतदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं।

सोई गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होई नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होई श्री राग महला तीजा जग हों मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल हों मैं धोती किवै न उतरै जे सो तीर्थ नहाए।

का निर्मल हुए मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हऊ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हौ तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जां देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हौ गुर सरनाई तह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हठ किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन कोरै रंग ना होए कूड़ कपट किने ना पाए।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यों आऊ सतगुर कै बल जाऊ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटी कर्म कमाऊ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बहुत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊ जिन्नी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फराऊ कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाऊ मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मलाए हौ सतगुर बिटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थीऐ भाग हीन बहर होए जो हर प्रभ पाणा सो थीआ तुर लिखिया ना मेटै कोए आपे सतगुरु आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलह समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिलै रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हों मल मल धुआ तिन पाए भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढै हों मैं मार रहाओ गुरमुखियां सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्लै ना पवै मन मुख रहे बिललाए ओए सतगुर आगै ना निमहै ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए गुण मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोए ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए गुरमुखा नो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए
हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दरवाज दे दर सच्चै सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास इनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार बहुत करह परमाईसी वरत है हुए अपार करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चेतना पावे बिसरिया सब साक सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत जिसनो तू पतिया एंदा सो सन तुझे अनित अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत इन प्रभ आप पलाया ना तिस जात ना पत सतगुरु पुरख मलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हूं मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोई नानक रत्ता रंग हर सब जग मह चानन होए श्री राग महला पंजवां मन बलास बहु रंग घना दृष्ट भूल खुशियां छत्र धार बादशाहियां विच सहसे परियां भाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बधाते दुख सहसा मिट गया रहाव जेते थान थनंतरा तेते भावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अफरिया सब को वसगत कर लयोन बिन नावै खाक रलिया कोट के तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवां पलके उठ पपोलिया बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चेतना आयु छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाह लैन लगा कित कपकड़े सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखिया।

साधु संग मसकते टूठे पावां देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार ने मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इक ससियों मन मानिया ता हुआ निहचल चीत।

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो है माथ मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथै संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथै मिरत ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवां सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपां छड कै गुर की चरणी पाह मन मेरे सुख

करनी परमना जिस जेवड अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिया जम की फास सुखदाता पह पंजनो तिस आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास बहुतो बहुत वखाणी है ऊचो ऊचा थाओ वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाओ नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाओ श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेण का अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवां एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार।

गुरपूरा आराध नित एकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान थलंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पहु गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यो निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन कीआं इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाहु कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिया आराधिया आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोय माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाव दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सबे साक। गिन कीता तिसह न जानी, मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हौ मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान त्याई है मस्तक होवै भाग, कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ। एथै मिलह वडाइयां दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागती सर्व कटां के नाथ, श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने, गुर हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाओ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा।

पास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ। साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अत अगली, कोई आन मलावे माई। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडार, सदा सदा सलाही है अंत न पारावार। परवदगार सलाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा हारा दी है एहा मत वसेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां, संत जनो

रह समर्थ पुरख अपार हर जानु हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चल से कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात पे यड़े सहो सेव तू सहरड़े सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहरे वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश न।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

कहाउ मान अपमान मंदे सो सेवक नाही तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही कहन कहावन एहु कीर्त करला।

बलिहारन तुस दित्ता अमृत नाम रहाओ। जिन तू सेविया पाऊ कर से पुरख सुजान, तिन्ना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान। गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्म दान, आए से परवान है जिन गुर मिलया।

वडियाइयां पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणीए सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होए काल रहाउ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड अवर ना कोई गुर करता गुर करनहार गुर

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांची है तितड़े सतगुर पास पूर्व लिखे पावनी सात नाम दे रास

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ शायर मेलिया तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखह सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेक मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लै सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू

कमला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीत गुर कै शब्द सलाहना।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बद्ध कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई।

रहाउ गिण राशि वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार गिण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने।

सोहु प्रभ जानिय साचो साच नाय सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जी मिले ता सहजे लय मलाय कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पकारे वाचिए वाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हौ सद बलिहार जास चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मलाए आप पछाणे घर वसै हौ मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रहे सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाओ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीवं।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहम सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको वडो वडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नानक शब्द पछ

तोली है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजोन खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिलर जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाई, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुरठा की सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसर, मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले, पाईए रतन बीचार, मन दी जय गुर अपनी, पाईए सर्ब प्यार, मुक्त पदार्थ पाईए, अवगण मेटन हार, पाई रे, गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद, वेद ब्यास कोई रहाओ, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोई, सफलियो बिरख हरियावला, शाम कनेरी होए, लाल जवे हरमान की, गुर पंडारे सोए, गुर पंडारे पाईए, निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए, पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो, सतगुर असुर संगार, पवजल बिखम डरावण, ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना तिसवान्य मलार, सतगुर पै का बोहिथा, नदरी पार उतार, एक तिन प्यारा विसरै, दुख लागै सुख जाए, जिहवा जलो जलावणी, नाम ना जपै रसाए, घट बिरसै दुख अगलो, जम पकड़ै पछताए, मेरी मेरी कर गए, तन तन कलत न साथ, बिन नावै धन बाद है, भूलो मार गयाथ, साचो साहिब सेवी है, गुरमुख अकथो काथ, आवै जाए पवाई है, पै किरत कमाए, पूर्व लिखिया क्यों मे

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसे

कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख घणो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवै प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद।

ऐसी हरस्यों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवै, दुध को खपण ना दे आपे मेल वशुन्या, सच वडे आई दे रे मन ऐसी हरस्यों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई, जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवे, गुरमुख सदा हजूर मनमुख।

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरै,

माया परम भलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोबा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा जा करी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सच्चो पल्ले पाए भुलण अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा तिसै प्यार नानक साच ना।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावे है सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुरबिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की कड़िए शब्द विगास आपे परखे पार खू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित

साजी है, एक चानण तेहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, तुर बख्शना मेटै कोई, साध मिलै साधु जने, संतोख वसै गुर पाई, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहि समाई, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैंदा जाय, कट कट वाजै किंगुरी, अन दिन शब्द सुपाई, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाय, नानक नाम ना विसरै, छूटै शब्द कमाय, श्री राग महला पहला, चित्ते दिसहि धौल हार, बग्गे बंक द्वार, कर मन खुशी उसारिया, दूजै हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन, तह ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो, गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ, राम नाम तन निर्मलो,

मन मुख जानै आपणी धियां पूत संजोग नारी देख भगासी नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चलै वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुचियै धर्म है वस्त सुथाय मनमुख होमै करमुसी गुरमुख पल्लै पाए साकत मेर गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है जो बारक दूदै माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास में।

आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दो ही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिये अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन विसाह मनमुख भोजन पच मोए।

राम तिसनो वाखी है जिस शेष ना होवी लेख असमान तरती चलसी मोकाम ओही एक दिन रव चल।

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुर को मग ना जाने, अंधे ठौर ना काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई, पे अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करह दिन राती, हम मैं मोच काया, जिस स्यो राता तैसो हुए, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाहु लाई, गुर शब्दी बीचार, सतगुर सेवे सहज उपजे, हम मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उरतार, प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाई, नाम निदान हर मन वसे, हम मैं दुख सब जाई, सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कह कहाई, बिन गुरे आप ना जाई, हर जियो भगत वशल सुख दाता, कर कृपा मन वसाई, नानक सुख